0: है
1: Leica Gold. CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में. रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ. हमारे राम.
2: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड हमारे राम 10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट.
1: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक Car Radio.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: Classic Nagme. Aapke apne Leica Gold par.

0: पार्क इन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फ्री पार्किंग भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के साथ अवेलेबल होगी। रजिस्टर नाउ एट shrijagannath.uk/events/rath-yatra2026। जय श्री जगन्नाथ।
1: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
2: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
3: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
4: Raat bhar na thame, na ruke. Classic nagme. आपके अपने लाइका गोल्ड पर

0: लाइका गोल्ड।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: 0208574 8410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: My fans shout at football matches.
5: Oh, wake up!
4: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
6: Like a gold par har raat ki yahi reet. Purane magar sada bahar geet.

0: लाइका गोल्ड,
1: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
2: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

गावे को गुण वढाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा दूर।

मन कोय मन्ने सुत होवे मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म से ती

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई, सो पातशाह साह पत साहिब नानक रहन जाई।

आद अनाहत जुग जुग एक ओवेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एक वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक ओवेश एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश ए

जोर ना जीवन मरण न जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा सच्चा दरबार, तिथे सोन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नान गया जापै जाए।

0: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Ye Ya Wo. Only Like a Gold.
1: Breakfast with Deep Roger.
2: Sunny spells in 3, 2, 1. Pop to Co-op. Co-op members get any two packs of 100% British barbecue favourites for £5.50, like smash burgers and sweet chilli chicken kebabs. Co-op, owned by you, right by you.
3: Ends 28th of July. Selected products subject to availability. Co-op group membership required. £1 joining fee. Full terms at co-op.co.uk/summer.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: Travel Hub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
6: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
7: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HamariRam10 for a 10% discount on all shows and tickets.
6: Exclusive radio partner, Like Our Radio,
8: the voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India,
9: live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
8: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
11: वेलकम टू द जंगल।
12: फिल्म बिल्कुल फेक।
11: हमारी फिल्म आर्मी वाली
13: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
12: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
11: और स्टार कास्ट है
12: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
14: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
12: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
15: पहले तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
16: किस लिए फिल्म में?
17: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
18: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
17: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
18: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
17: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
18: Visit Kajal's Couture.
19: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
20: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
21: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
20: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
22: Backstage Siblings, first ever UK performance happening on the 9th and 10th of October 2026 at SKLPC Northolt. Get your tickets now at sklpc.com/BSS.
23: 24 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
23: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. Tours by coach, Eurostar or flight. We give you the option, you choose what works best for you. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: Sleep Roger, waking you up every weekend. Laika. ये है
1: Laika Gold.
0: Laika Gold.
2: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है। ओ मूवी जिन्हें सब नू हसा हसा के लोट पोट कीता।
3: की कह रहे हो?
2: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
3: की कह रहे हो?
4: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4 जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
5: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
2: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ए लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
6: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
7: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02039635757। Greens by Danube, prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai।
10: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टैक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 02089223444 24-hour line।
11: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
12: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
11: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
12: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
11: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
12: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
11: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
13: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
11: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
13: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
11: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
13: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.

0: Disha Rice Live Tasting on the 23rd and 24th of May at Pick and Save, Kenton Road, Harrow, HA38BX. Come down and taste the difference.
1: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
2: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
3: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
0: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
4: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
0: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
4: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
0: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
5: Welcome to the jungle.
2: Film बिल्कुल fake.
5: हमारे film army वाली.
6: और उसके लिए आप सभी को training की जरूरत है.
2: Danger एकदम real और survival skills zero.
5: और star cast है.
2: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल and a huge star cast bring jungle madness to cinemas.
7: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने gun पकड़ा था क्या?
2: Watch Welcome to the Jungle in cinemas now.
8: पहले तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
9: किस लिए फिल्म में?

0: किशोर कुमार की आवाज में ये क्लासिक गाना जिसे आपने सुना आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन से, ये है लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स। और इन दो बैक टू बैक गीतों को सुनने के बाद आपके ढेरों मैसेजेस आए हैं। हमारे सत्यनारायण सैनी जी कहते हैं, ऋतु ये मेरा फेवरेट गाना है पल पल दिल के पास। तो चलिए, जिनका भी फेवरेट गाना है ये मैंने उन्हीं को दिया, जिसमें कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक था, फिल्म के हीरो थे धर्मेंद्र, साथ में थी खूबसूरत राखी। और उससे पहले आपने अवतार फिल्म का गीत सुना जो राजेश खन्ना की कमबैक फिल्म थी, जिसमें उनके साथ शबाना आजमी थी, म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और इस फिल्म ने भी कमाल धमाल मचा दिया था। और ख़ास तौर पर इस गाने ने, जो बहुत सारे साथियों का फेवरेट है, लेकिन इस गाने को सुनकर एक और मैसेज आया है और ये मैसेज भेजा है पुरुषोत्तम कपिला जी आपने। कहते हैं, ऋतु जी सादर नमस्कार, ये सॉन्ग मैं हर रोज सुनता हूँ राजेश खन्ना और शबाना आजमी का, और इस सॉन्ग ने मुझे पागल बना दिया है। हाँ जी, आपने बताया है कि इस सॉन्ग को सुनने के बाद मतलब इतना पसंद है कि आपने जब आपका बेटा हुआ तो उसका नाम भी राजेश रखा उस समय पर, और आपका कहना है कि ये गाना बजाकर आपने मेरा दिन बना दिया। क्या बात है, खूबसूरत मैसेज भिजवा कर आपने भी मेरा दिन बना दिया। और ऐसे ही अनेकों मैसेजेस मुझ तक पहुँच चुके हैं, लेकिन उनके बारे में बात करूँगी। पर सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल मज़े में हैं, बहुत खुश हैं और इन्जॉय कर रहे हैं अपने लाइफ को। मौसम कल बहुत गर्म था, रात को सोने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में थोड़ी सी बिजली चमकी, थोड़ा सा पानी बरसा जिसने हमें थोड़ी राहत दी, लेकिन आज का मौसम कल से बेटर है। आज आसमान पर बादल छाया हुआ है, सूरज शायद आज कम देखने को मिले तो अच्छी ही बात है। लेकिन हमारे सूरज जी आ गए साउथ हॉल में, हमें सुन रहे हैं और कहते हैं हम सबको आपका इंतज़ार रहता है। तो सूरज आप मेरे शो में चमकते रहो, लेकिन आज प्लीज़ आसमान में मत चमकना क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत गर्मी कर दी है। चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे, गीतों बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो वन पाउंड आज आपको देगा 124.2 भारतीय रुपए, लेकिन हमेशा की तरह याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। और इस महीने के अंत तक आपको मौका मिल सकता है जीतने का 75 पाउंड्स का वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स, ऑल्सो अ ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: तो भाई फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और आज इजिप्ट ईरान की टीमें खेलेंगी, इसके अलावा ग्रुप जी से न्यूजीलैंड बेल्जियम की टीमें खेलेंगी, इसके अलावा आज उरुग्वे और स्पेन की टीम का भी मैच होगा या हो चुका है, मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, लेकिन पनामा और इंग्लैंड की टीम, आज इंग्लैंड का मैच है तो आज एक बड़ा मैच है, तो आप सब मैच को ज़रूर इन्जॉय कर रहे होंगे। लेकिन आपको बता दें कि भूलिएगा मत अपना 15 मिनट्स का फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: दिस अपडेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय रैक लॉ सॉलिसिटर्स, कॉल 0203-345-2000 और विजिट raklaw.co.uk।
3: लाइका गोल्ड।

0: लता जी और नितिन मुकेश की आवाजों में था ये गाना, और ये थी पूनम ढिल्लन और फारूक शेख की पहली फिल्म जिसमें खयाम का म्यूजिक था। और इस फिल्म में गीतों को गाने के लिए नितिन मुकेश को, स्पेशली इस गाने को गाने के लिए नितिन मुकेश को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन भी मिला था।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो आज ये गाना आपने नितिन मुकेश की आवाज में सुना, और ये खास रीजन है क्योंकि आज नितिन मुकेश की बर्थडे है। यस, 27th जून 1950 में बॉर्न नितिन मुकेश आज 76 ईयर्स के हो गए हैं, और एक जाने माने सिंगर हैं। जाने माने सिंगर के बेटे भी हैं, मुकेश जी के बेटे हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड के अभिनेता जो हैं नील नितिन मुकेश, वो उनके बेटे हैं। इन्होंने अपने फादर की लेगेसी को चुना और मुकेश जी का जो काम था उसे ही आगे बढ़ाया। 1980s और 1990s के दशक में इन्होंने एक सफल प्लेबैक सिंगर के रूप में अपनी पहचान बनाई, और उन्होंने खयाम, जिन्होंने उन्हें इस फिल्म में मौका दिया, उनके साथ साथ आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बप्पी लहरी, राजेश रोशन जैसे बड़े टॉप के म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ अच्छा काम किया। लेकिन उन्होंने खूब सारे भजन भी गाए जिसके लिए उन्हें याद किया जाता है। कई सारे स्टेज शोज भी उन्होंने किए हैं सक्सेसफुली, और उन्होंने दुनिया भर में अपने पिता मुकेश जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कॉन्सर्ट भी किया था, कल की यादें, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। बहुत सारे गाने हैं उनके अच्छे हैं। एक और गीत है जिनके लिए उन्हें याद किया जाता है, मैं सुनवाती हूँ क्योंकि आज उनका हैप्पी वाला बर्थडे जो है, तो उनके सारे फैंस की ओर से नितिन मुकेश जी को हैप्पी वाला बर्थडे, हैप्पी बर्थडे।
1: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: लीजिए, ये भी थी लता जी और नितिन मुकेश की आवाजें, और इसमें भी म्यूजिक था खयाम साहब का। और आपको बताया मैंने कि आज नितिन मुकेश की हैप्पी वाली बर्थडे है और बहुत सारे साथी उन्हें हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स इज कमिंग विद मोर फ्लेवर्स एंड हेल्दी ऑप्शन इन अ कन्वीनियंट बाउल। कोका नूडल्स, क्विक एंड टेस्टी नूडल्स इन 12 फ्लेवर्स।
0: तो आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ये है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और मैं ऋतु शर्मा हूं आपके साथ दोपहर के पूरे एक बजे तक। आपके मुझे ढेरों मैसेजेस मिल चुके हैं, तो चलिए एक नज़र आपके मैसेजेस पर डाल ली जाए। चलिए फिर,
2: ये है लाइका गोल्ड।
0: तो लीजिए, सबसे पहले मैसेज भेजा है विक्रम जगदेव आपने। बड़े दिनों बाद आज आपका मैसेज आया है और बहुत अच्छा लगा है। पुरानी यादें ताज़ा हो गई जब हम साथ किया करते थे काम, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक है और गीतों को पसंद कर रहे हैं। सो थैंक यू आपके मैसेज के लिए। इसके अलावा कंवल जी, बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। प्रज्ञा साथ दे रही हैं। हमारे गिरीश आनंद जी भारत से हैं, अर्जुन जी हमारे साथ हैं, महेंद्र जी साथ हैं, संध्या जी, हमारे जय किशन वाला जी, आपका मैसेज आया है और आपने लिखा है कि आज आप 44th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ऐसे करते हैं कि अगला जो गाना है ना वो बिल्कुल आप दोनों को ही डेडिकेट करते हैं, और हमारी ओर से आप दोनों को आज आपके वेडिंग एनिवर्सरी 44th वेडिंग एनिवर्सरी की ढेरों ढेरों ढेरों बधाइयां। और ये मैसेज भेजा है राजेश जी आपने, थैंक यू, आपने शनिवार की शुभकामनाएं दी हैं। और आजकल इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, आपने एक विचार शेयर किया है कि हर असफलता अगली बार बेहतर प्रयास करने का कारण और अवसर देती है, और यही सफलता को बनाता है। वेल सेड, बिल्कुल सही कहा, साथ देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फारूक जी, रोशनी जी, हंसा जी, मालती जी, हरीश खत्री जी, दिनेश पोपट, मोहम्मद अयूब, थैंक यू दिव्या जी, योगेंद्र जैन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड हमारे साथ पुरुषोत्तम कपिला जी, आपने भी बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स लिखकर भेजी हैं, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सत्यनारायण सैनी जी भारत में, महेंद्र पटेल जी क्रोइडन में, इस्लाम में, सुरजीत जी एंड मृदु जी, आप लिखती हैं कि अच्छी भूमिका, अच्छे व्यवहार और अच्छे विचार वाले लोगों को हमेशा ही याद किया जाता है, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। बिल्कुल सही बात आपने हमारे साथ शेयर की है, थैंक यू। इसके अलावा है हमारे साथ किशोर लाडवा जी, जासू जी, नरेंद्र बागिया जी एंड सूरज फ्रॉम साउथ हॉल लिखते हैं कि मैं फाफड़ा और जलेबी जलेबी बनाते हुए आपको सुन रहा हूं, और साथ में है कैलाश, विशाल, भानु, हैरू, जयमाला, सभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, साथ देने के लिए धन्यवाद। एंड ऑफकोर्स हमारे शेखर अनन जी, अनिल सोनी जी, मिसेस पे के छियान, सहर जी, फरीदा जी, उलाश तोची, बहुत लंबी लाइन है जिसे मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन फिलहाल ये बता दूं।
1: Ritu Sharma live on Like a Gold Greater London. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: अगर हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि Southall Travel को याद रखिए, और अब दुबई से रेस्ट्रिक्शंस भी हट चुके हैं, तो अगर आप दुबई घूमना चाहते हैं तो Southall Travel को अच्छी डील्स के लिए फोन कीजिए अभी ऑन 0208-574-8410 पर, और ये सब एट ऑल प्रोटेक्टेड है।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: At Betfair, we know nothing is certain in football or in betting. So maybe you've got a tip. Maybe it seems clear and obvious. Or maybe it's best to let this one go. Maybe Betfair can help with that. We could all do with a break sometimes. Stay on top of your play with our safer gambling tools so you can bet at your best. Try one out for size on the Betfair app. Everyone's got an opinion. Back yours or don't at Betfair.
4: 18+ gamblerware.org.
1: This is Ritu Sharma.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price
5: at all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com. com.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: Kajal's Couture. For every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
7: Discover Kajal's Couture Southall. The grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall. UB1 1LR.
10: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
7: Plus, like a listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
10: Kajal's Couture, Southall, where every occasion finds its perfect style.
7: Visit kajalscouture.co.uk.
11: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
12: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
11: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
12: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
11: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
13: Welcome to the jungle.
14: Film, bilkul fake.
13: Hamare film army wali.
15: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
14: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
13: और स्टार कास्ट है
14: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड

0: करवटें बदलते रहे सारी रात हम। वैसे आजकल हम लोग भी करवटें बदल बदल कर ही सो रहे हैं गर्मी के कारण, लेकिन ये गाना बहुत ही मशहूर गाना था आर डी बर्मन के म्यूजिक पर, उससे पहले अजनबी फिल्म का गीत जिसमें भी आर डी बर्मन यानी पंचम दा का म्यूजिक था। और आज उन्हें हम याद करने वाले हैं आज की यादें में, क्योंकि आज पंचम दा की बर्थ एनिवर्सरी है। आज ही के दिन यानी कि 27 जून 1939 में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था, और ये अपने ज़माने के महान संगीतकार आर डी बर्मन के बेटे थे। सभी इन्हें प्यार से पंचम दा बुलाते हैं हम जानते हैं, और एक हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा जादुई सितारा है जिन्होंने उस ज़माने के म्यूज़िक की डेफिनेशन ही बदल दी। उन्होंने हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में वेस्टर्न म्यूज़िक को इस तरह से मिलाया कि आज भी उनके गाने हर जनरेशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें टॉप पर रहते हैं। आप सब उन्हें पसंद करते हैं, इसलिए आज कुछ गाने उन्हीं की फिल्मों से उन्हीं के म्यूज़िक पर सुनवाऊंगी और कुछ बातें भी उनके बारे में बताऊँगी। जैसे कि सबसे पहले शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि हम राहुल देव बर्मन को पंचम दा क्यों कहते हैं, तो बताऊं इसके पीछे दो वजह हैं। पहली ये कि जानने वाले कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो जब भी रोते थे तो संगीत के पांचवें सुर तक उनकी ध्वनि निकलती थी, आवाज़ निकलती थी। कहते हैं ना, क्या पंचम सुर में रो रहा है, इतनी ज़ोर से रो रहा है, और बस यही कहते थे ये तो बहुत पंचम सुर में रोता है, और कहते कहते उनका नाम पंचम ही पड़ गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पंचम नाम उन्हें अशोक कुमार ने दिया था जब उन्होंने नए नन्हे राहुल को सरगम का पांचवा सुर पा पा बार बार गुनगुनाते हुए सुना, तो उन्होंने कहा कि इसका नाम पंचम रखना चाहिए क्योंकि ये बार बार पा पा बोल रहा है। एनीवेज, बात कौन सी सही है ये तो नहीं पता, लेकिन आज कुछ किस्से मैं आपको ज़रूर सुनवाऊंगी। आप हमारा साथ देते रहिए, एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनवाने वाली हूँ आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 124 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको ब्रांच योनो ऐप के थ्रू और ऑनलाइन करवा सकते हैं। और 7 जुलाई से यानी जुलाई के एंड से पहले पहले आप 75 पाउंड का वाउचर भी जीत सकते हैं एवरीडे जब आप 1000 पाउंड से ज्यादा ट्रांसफर करते हैं, या फिर एक गोल्ड कॉइन आपको 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन मिल सकता है जब आप 2000 पाउंड से ज्यादा ट्रांसफर करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: तो आज पनामा और इंग्लैंड के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होगा, और आपको बता दें कि इसके साथ साथ 15 मिनट की फ्री एडवाइस लेना बिल्कुल मत भूलिए हमारे स्पॉन्सर्स Rack Law से जब आप मेंशन करेंगे Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: Scan your Tesco club card and get match ready with sizzling deals. Get a 12-pack of Birra Moretti, now just £12, down from £18.25.
5: Club card accepted.
4: Because every little helps. Drinkware 18 plus, majority of larger stores, 330ml bottles, ends 13th of July. Club card or app required.
1: This is the Leica Radio Network, across London, Manchester and the Midlands.

0: Tupco food containers are recyclable, reusable and microwavable.
1: School ke liye, office ke liye, uni ke liye, Satco food containers.
0: The perfect food storage solution, Satco food containers.
2: Jadon vi comedy movie di gal hundi hai ta ek movie da naam hamesha aunda hai. Oh movie jinne sab nu hasa hasa ke lot pot kita.
3: Ki keh rahe ho?
2: Oh movie jidi story ne brain rot kita.
3: Ki keh rahe ho?
4: Kippi Grewal, Binnu Dhillon, Sargun Mehta, fir to leke aa rahe ne Punjabi cinema di sab to vaddi franchise Carry On Jatta 4 jithe advocate Dhillon फिर कहेंगे
5: और टेलो ने काला कोट एवे नहीं पाया।
2: This 26 June Carry On Jatta 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
6: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
7: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है? इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन
8: 02082922-4-24-hour line. Wow, and this is being presented by Pankaj Soda Galaxy Shows. Yaad rakhjo.
9: Patni Premier League shows at Trisleep, Alberton, East and South London, Lower Home, Leicester. For more information, call Deepa on 07947561947.

0: सत्य पे सत्ता फिल्म का गाना आवाज किशोर दा की, और आज हम यादें में याद कर रहे हैं आर डी बर्मन को, क्योंकि आज है उनकी बर्थ एनिवर्सरी। क्या आप जानते हैं कि आर डी बर्मन ने सिर्फ 9 साल की उम्र में अपनी पहली धुन बनाई थी? यस, एक गाना था ए मेरी टोपी पलट गया, जिससे उसके पिता ने फिल्म फंटूश, यानी कि एस डी बर्मन ने इसे फिल्म फंटूश में 1956 में इस्तेमाल किया था। और एज ए इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म आई थी छोटे नवाब, जो 1961 में आई थी, लेकिन उन्हें असली पहचान फिल्म तीसरी मंजिल से मिली, जिसमें गाने बनाए थे उन्होंने आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, और भी कई गाने जो बहुत बड़े हिट हुए थे। लेकिन आपको बता दें कि पंचम दा सिर्फ एक संगीतकार नहीं बल्कि एक साउंड साइंटिस्ट भी थे, और जो हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र जो होते हैं ना, वो सिर्फ उन पर ही निर्भर नहीं रहते थे, बल्कि उन्होंने गानों में म्यूजिक पैदा करने के लिए कई अनोखे एक्सपेरिमेंट किए हैं। जैसे कि ये जो गाना आपने सुना ना, दिलबर मेरे, इस गाने में जो बैकग्राउंड में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है ना, पंचम दा ने कांच की बोतलों पर चम्मच मारकर वो आवाज निकाली थी। गानों में रिदम लाने के लिए वो कभी भी सैंड पेपर को रिगड़ते थे, कभी कंघी के दांतों पर उंगली फहराते थे, और आपको पता होगा कि फिल्म पड़ोसन के गाने में तो उन्होंने एक अजीब सी गुड़गुड़ की आवाज़ भी निकाली है, जो पंचम दा ने पानी के गरारे करते हुए रिकॉर्ड की थी। ओ माय गॉड, कैन यू बिलीव दिस? लेकिन ऐसा लोग कहते हैं उनके बारे में। तो चलिए, इतनी बातें की हैं तो एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनवाती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूँ कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में एक कॉम्पिटिशन भी है, तो साथ जरूर देते रहिए।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma. Leica Extra podcast update.
0: तो इस बार का नया लाइका एक्स्ट्रा का पॉडकास्ट निकल चुका है, एपिसोड रिलीज़ हो चुका है, जिसका टॉपिक है ट्रेडिशंस एंड टैबूज, और जिसे होस्ट किया है रेडियो वाली ने। और हमेशा की तरह आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है स्पॉटिफाई पर, यूट्यूब पर, या फिर जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ जाकर आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
3: Need anything from Tesco? Get match ready with 24 cans of Pepsi Max. Now just £7.50, down from £11.25.
4: Club card accepted.
3: Because every little helps. Majority of larger stores ends 30th of June, excludes Northern Ireland. Club card or app required.
5: This is Leica Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
7: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
8: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
7: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
10: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5 कोर्स लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730099823।
11: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
12: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
11: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
12: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
11: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
12: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
11: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
12: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
13: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
14: Location, location, location.
15: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
14: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
15: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
14: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
15: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
14: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
15: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
14: High appreciation.
15: In Dubai.
16: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
17: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chicken स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
18: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
17: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
19: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
20: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Europe to faraway places, the same delicious Indian food. Wherever you go, that's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: ये गाना था मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, और ये हमें बताता है कि न सिर्फ किशोरदा के साथ बल्कि रफ़ी साहब के साथ भी उन्होंने बहुत ही अच्छे गाने बनाए हैं, या फिर कह सकते हैं कि 70s और 80s का जो दौर था वो पूरी तरह से पंचमदा के नाम रहा। उन्होंने आशा भोसले से शादी भी रचाई, किशोर कुमार लता जी के साथ मिलकर सैकड़ों ब्लॉकबस्टर गाने दिए, लेकिन 80s के आते आते उनका जो दौर था थोड़ा धीमा पड़ गया था। हालांकि 90s में जो फिल्म आई थी 1994 अ लव स्टोरी, उससे उन्होंने कमबैक किया था और एक बार फिर से साबित कर दिया था कि राजा हमेशा राजा ही रहता है। उनकी धुने एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, या फिर कुछ ना कहो, क्या गाने हैं, आज भी सुनकर एकदम दिल खुश हो जाता है। लेकिन एक सैड बात ये थी कि जब ये फिल्म आई थी 1942 अ लव स्टोरी, इसकी रिलीज और इसके गीतों की सक्सेस को पंचमदा नहीं देख पाए। इस फिल्म की रिलीज से पहले ही पंचमदा को दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन पंचमदा हमारे बीच नहीं है, पर आप किसी भी म्यूज़िक शो में चले जाइए, कोई भी फेवरेट्स की लिस्ट उठा लीजिए, उसमें पंचमदा के गाने होते ही होते हैं। आज के जो भी छोटे बच्चे हैं जो गीतों को पसंद करते हैं, उनके जो सॉन्ग सेलेक्शन है उसमें पंचमदा के गीत हमेशा ही होते हैं। और आपके भी ढेरों मैसेजेस मिले हैं कि आपको बहुत मज़ा आ रहा है पंचमदा के गीतों को सुनने का। तो चलिए एक और गीत सुनवाती हूँ आपको, अब से बस थोड़ी ही देर में।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 124.8 भारतीय रुपए, 367 पाकिस्तानी रुपए एंड 162 बांग्लादेशी टकास।
2: Laika Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: LAIKA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 99.4 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
4: Laika Gold. Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
5: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
6: Lattuke halo ne nandala.
5: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue.
6: Meetha khara, khara.
5: Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Laika Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram.
9: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HAMARERAM10 for a 10% discount on all shows and tickets.
11: Exclusive radio partner, Laika Radio.
12: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
13: साउथहॉल ट्रेवल Auto protected.
14: Welcome to the jungle.
15: Film बिल्कुल fake.
14: हमारे film army वाली.
16: और उसके लिए आप सभी को training की जरूरत है.
15: Danger एकदम real और survival skills zero.
14: और star cast है.
15: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल and a huge star cast bring jungle madness to cinemas.
17: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने gun पकड़ा था क्या?
15: Watch Welcome to the Jungle in cinemas now.
18: पहले तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
19: किस लिए फिल्म में?
20: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
21: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
20: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
21: Call us today on 0208 706 0915. That's

0: Drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
1: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
2: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
1: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
2: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
1: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
2: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: 16 days to China, guaranteed departure on 24th September with 100 off for the first 10 if booked before the end of this month. Visit sonatours.co.uk or call 0208 951 0111.
4: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma on Like a Gold, Greater London.

सितमगढ़ फिल्म से था ये गाना, जिसे डेडिकेट करते हैं गिरीश जी आपको, कहते हैं मेरा बहुत फेवरेट गाना है। और इन गीतों को सुनकर बस यही लग रहा है कि क्या कमाल का म्यूजिक तैयार किया है आर डी बर्मन ने, न सिर्फ किशोरदा। This is Laika. न सिर्फ मोहम्मद रफी बल्कि मुकेश जी के साथ भी उन्होंने कुछ ऐसी अमर धुनें बनाई हैं कि जो जब बनती हैं तो दिल खुश हो जाता है। कुछ ऐसा ही है ये गाना।

कुछ गाने आरडी बर्मन के म्यूजिक पर मैंने आपको सुनवाए। गाने तो बहुत सारे हैं, जी तो जा रहा था और बहुत सारे गीत सुनवा दूं, लेकिन समय नहीं था। ये गीत होगा आज की यादें का आखिरी गाना, और इस गाने के बाद हम आपसे मिलेंगे प्रोग्राम के नेक्स्ट वाले आवर में, और एक कॉम्पिटिशन भी साथ में खेलेंगे। थैंक यू साथ देने के लिए।

0: वर्षा भोसले की आवाज में ब्यूटीफुल गाना, वन ऑफ माय फेवरेट, जिसे लिया था मैंने फिल्म सौदागर से, जिसमें अमिताभ बच्चन थे, साथ में थी नूतन जी। और उससे पहले आपने गीत सुना आन मिलो सजना, किशोर कुमार की आवाज में, राजेश खन्ना की फिल्म से था ये गाना। और लीजिए, तो बैक टू बैक गीतों के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। सुन रहे हैं लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ये है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और रितु शर्मा है आपके साथ और बहुत सारे साथी वेट कर रहे हैं आज के थ्री वर्ड्स गेम का। लेकिन लेकिन लेकिन आज हम थ्री वर्ड्स गेम नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि आज इस वाले आवर में एक कॉम्पिटिशन है, लेकिन कल पक्का प्रॉमिस जरूर खेलेंगे। तो आज का कॉम्पिटिशन क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। लाइका रेडियो नेटवर्क जेज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर आपको मौका देने जा रहे हैं दो टिकट्स जीतने का उस गुजराती स्टेज कॉमेडी शो का, जिसका नाम है सखना रहेजो हस्बैंड जी, जिसमें लीना शाह और समीर शाह ने काम किया है। ये शो संडे 28 जून को 2:30 यानी कि 2:30 बजे से एंड 7 PM एट पीपल सेंटर इन लेस्टर में होगा। और आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेजना है हस्बैंड। टिकट्स जो हैं वो 7 PM शो के लिए वैलिड रहेंगे और ये टिकट्स जो हैं वो सिर्फ लेस्टर वेन्यू के लिए हैं। और आपको टिकट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे उसी दिन जिस दिन शो है, वहाँ पर वेन्यू पर जाकर रिसेप्शन पर आपके टिकट्स वहाँ आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी। तो देर किस बात की है, जल्दी से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज दीजिए हस्बैंड, उसके साथ साथ अपना प्यारा नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस भी। जल्दी कीजिए, नंबर मैं आपको बताती हूँ।
1: WhatsApp message Leica Gold now on 0744-232323.
0: और इस वाले आवर के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कौन बने हैं विनर और कौन जा रहे हैं लेस्टर इस पॉपुलर गुजराती शो को देखने।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज £1 आपको देगा 124.2 भारतीय रुपए। ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग दी योनो SBI UK मोबाइल ऐप। और इसके अलावा आप एंड जून के एंड तक £75 का वाउचर जीत सकते हैं एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर £1,000। ऑल्सो अ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर £2,000। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Leica Gold TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price
2: at all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
4: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
5: Lattuke halo ne nandala.
4: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
2: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
9: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
10: Southall Travel, Atoll Protected.
11: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
10: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
11: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
10: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
11: Kajal's Couture Southall, where every occasion find its perfect style.
10: Visit kajalscouture.co.uk.
12: Great news, Tariq Halal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tariq Halal Raiders Lane, 287 Raiders Lane, Pinner, HA5F5EJ. Quality, value and freshness only at Tariq Halal Raiders Lane.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
14: The future belongs to creators. At RoboThink Summer Camps, children build robots. Learn coding and future-ready skills. Leica listeners get 10% off full week bookings with code LEICA10. Kit package worth over £7,500. Visit book.robothink.co.uk/Leica.
15: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
16: BAPS મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
15: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
16: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
15: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
16: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે. આજે બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
15: કોલ 020-8900-2323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
16: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
17: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
18: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: थी आयशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजें, तड़प तड़प के जीते तड़प तड़प के मरते। फिल्म का नाम एक ही भूल और ये थी जितेंद्र और रेखा की फिल्म। और आप सब जानते हैं कि जितेंद्र हमारे इस बार के आर्टिस्ट ऑफ द वीक है। आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं, प्रोग्राम में कंपटीशन चल रहा है और इसीलिए आज हम अपना थ्री वर्स गेम नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन कल हम जरूर खेलेंगे। लेकिन अब शुरू होता है आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
0: और आज के कंपटीशन के विनर कौन बनते हैं उनका नाम मैं अनाउंस करूंगी शो के खत्म होने से पहले। लेकिन फिलहाल आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: जी हाँ, आवारा फिल्म से था ये गाना, जो था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना, और आप सबने इसे पसंद किया है, सो थैंक यू सो मच। एक और गीत इंतजार कर रहा है, लेकिन शो में कंपटीशन भी चल रहा है, और आपको बता दूं कि ये कंपटीशन लेस्टर के लिए है। जी हाँ, लेस्टर में जो शो होने जा रहा है, सखना रहे जो हस्बैंड जी, उसके दो टिकट्स हम आपको देने जा रहे हैं, लाइक अ रेडियो एंड जैज एंटरटेनमेंट आपके लिए लेकर आए हैं ये गुजराती स्टेज कॉमेडी शो, जिसमें लीना शाह और समीर शाह ने काम किया है, और ये होने जा रहा है संडे को 28 जून, यानी कि कल, और ये होगा पीपल सेंटर इन लेस्टर। तो अगर आप लेस्टर जा सकते हैं, आपको गुजराती समझ में आती है, तभी आप पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि टिकट्स आपको वेन्यू पर ही मिलेंगे, यानी कि शो के शुरू होने से पहले आपको वहां जाना होगा और आपको अपने टिकट्स कलेक्ट करने होंगे और मजे के साथ शो को देखना होगा। तो अगर आप लेस्टर जाकर शो को देखना चाहते हैं तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए, अपना नाम, अपना टेलीफोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और हस्बैंड लिखकर हमें भेज दीजिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
0: चलिए फिर सुनवाते हैं आपको आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना।
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: लता जी और गीता दत्त की आवाजों में था यहूदी फिल्म का ये गाना, जो कि दिलीप कुमार और मीना कुमारी की एक बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म थी, जिसमें म्यूजिक था शंकर जय किशन का। और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का दूसरा गाना। और प्रोग्राम में कंपटीशन चल रहा है, और ये कंपटीशन लेस्टर के लिए है। अगर आप लेस्टर जा सकते हैं शो को देखने के लिए, तभी पार्टिसिपेट कीजिएगा। और कुछ ही देर में बताऊंगी कौन बने हैं आज के इस कॉम्पिटिशन के विनर। लेकिन उससे पहले याद दिला दूं कि साउथ हॉल ट्रैवल एक बार फिर से आपके लिए अच्छी डील्स लेकर आए हैं दुबई के लिए, क्योंकि अब वहां से रेस्ट्रिक्शंस उठ चुके हैं, तो आप जा सकते हैं। अच्छी डील्स चल रही हैं साउथ हॉल ट्रैवल पर दुबई के लिए। आप उन्हें फोन कीजिए 0208-574-8410 पर। ऑल एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Ye hai like a gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: 105 सुपरहिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी। लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी। फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे। टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk, कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655। सखणा रेजो
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
8: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
7: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
8: Call 0208-706-0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208-706-0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
7: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
9: Packed for the trip? Gifts? Passport?
10: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
9: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
10: Simzy?
9: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
8: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
11: Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. Two departures November and February, it's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
12: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill. A desi tadka is total risk, hai na?
13: Well, she is talking about Jaimin Food potato chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
12: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
14: Backstage Siblings, first ever UK performance happening on the 9th and 10th of October 2026 at SKLPC Northolt. Get your tickets now at sklpc.com/BSS.
15: Lotto from the National Lottery now gives you two chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. One ticket, two chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you.
16: See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
17: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: इसके अलावा आज आरडी बर्मन की बर्थडे भी, बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की आज की यादें में, और आप सबके ढेरों मैसेजेस मिले हैं, आपने गीतों को पसंद किया है, साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय आ गया है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कमल जी से बात कर ली जाए।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, जस्ट एड हॉट वाटर एंड एंजॉय कोका नूडल्स इन 3 मिनट्स। Women's Cricket Updates, presented by Carmel Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
2: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
0: तो लीजिए T20 वर्ल्ड कप का अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कमल जी। हेलो कमल जी, बताइए क्या है आज आपके पास हमारे साथ शेयर करने के लिए?
3: वेरी गुड बट अमेजिंग डे अगेन, बट वेरी वेरी हॉट और बहुत ही गर्मी चल रही है आज तो। बट कल एक्चुअली एक मैच था विच इट वॉज स्कॉटलैंड अगेंस्ट श्रीलंका, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू श्रीलंका बिकॉज दे वॉन द गेम यस्टरडे एंड फर्स्ट टाइम दे हैव गॉन दिस फार इन अ टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड कप। सो श्रीलंका स्कोर्ड 154/7 and Scotland 151/6, so it was a good win. But aaj we have a triple header. At this moment we've got Pakistan against Netherlands. Pakistan 126/6 in their 20 overs. Netherlands is chasing now 56/3 in 10 overs. So in 56 ball they need 71, and for both of them they need a win because they will be the first points on the table for them. Thereafter, we've got West Indies taking Ireland, which will be a very good game. Then we've got a massive game later on, the home nation, England, taking on New Zealand. So we'll give you all the updates as we go. And then we've got a very big game. Kal ko bahut hi bada game hai, South Africa, Bangladesh. And then you have a massive one in the afternoon, Australia, India. So we got great matches before we got to the semi-finals. Thank you so much.
0: Thank you, Kamalji.
1: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
2: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 10% on full-week summer camp bookings with code LEICA10 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
4: ये है लाइका गोल्ड।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 124 भारतीय रुपए, 367 पाकिस्तानी रुपए एंड 162 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 99.4 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: तो चलिए समय आ गया है।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: समय आ गया है आज के कंपटीशन के विनर का नाम अनाउंस करने का। ये कंपटीशन गुजराती शो के बारे में था जिस जो होने जा रहा है संडे को, कल यानी कि 28 जून को, और लेस्टर में हो रहा है ये शो। और जो विनर बने होंगे उनको टिकट्स कलेक्ट करने होंगे वेन्यू बॉक्स ऑफिस पर जाकर। तो जो हमारे आज के इस कॉम्पिटिशन के विनर बने हैं उनका नाम है गौरव पटेल। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन गौरव जी, आपको मिलते हैं 2 टिकट सखना रहे जो हस्बैंड जी इस प्रोग्राम के, तो मजे के साथ देख कर आइए और हमें जरूर बताइए कि ये शो आपको कैसा लगा। और बस इसी के साथ आपको बताती चलूं कि अगला गीत लेकर चलेगा न्यूज तक। न्यूज के उस पार अनुराग होंगे आपके साथ लाइका गोल्ड पर, फजीला होंगी लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर, एंड नीरज होंगे लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर। कल हम आपसे

0: फिर मिलेंगे ढेर सारे गीतों के साथ, ढेर सारी बातों के साथ। कल होगी आपसे फिर से मुलाकात। बहुत सा ख्याल रखिए। एंड वंस अगेन गौरव पटेल जी, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।
1: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
2: दिस इज लाइक अ गोल्ड।

0: घटा छा गई है, बाहर आ गई है। उसी के साथ आपकी वीकेंड वाली पाठशाला भी ऑन हो गई है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, आपके प्यारे प्यारे संदेशों का, और बहुत बहुत शुक्रिया रितु शर्मा जी का जो पहले थी हॉट सीट पर। आप सुन रहे हैं वीकेंड वाली पाठशाला, मैं हूं आपके साथ अनुराग, और ये गाना इतना ही खूबसूरत है जितना इस फिल्म के किरदार थे। वैसे आपको बता दें, फिल्म वारिस का ये हमने आपको गाना सुनाया था, 1988 को ये फिल्म रिलीज हुई थी, और उत्तम जगदीश जी ने इस फिल्म में अपना संगीत दिया था। स्मिता पाटिल, राज बब्बर, राज किरण, अमृता सिंह इस फिल्म में मुख्य किरदारों में नजर आए थे। लेकिन बात करते हैं हम बेहद ही टैलेंटेड वर्सटाइल एक्ट्रेस स्मिता पाटिल जी की। कहा जाता कि बहुत टैलेंट था उनके अंदर, और उस टैलेंट को से हम अछूते रह गए, क्योंकि बहुत जल्दी ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। स्मिता पाटिल जी का निधन फिल्म वारिस की डबिंग के दौरान ही हो चुका था। मुख्य अभिनेत्री स्मिता पाटिल इस फिल्म में एक अहम किरदार में थी। अचानक आकस्मिक उनका निधन होने की वजह से उनकी आवाज़ को मशहूर अभिनेत्री रेखा ने बाद में डब किया था। हालांकि उस दौर में शबाना आजमी भी एक बेहतरीन कंटेंडर थी स्मिता पाटिल जी के सामने, लेकिन उनके निधन के बाद शबाना जी ने भी इस फिल्म में अपनी डबिंग करने के लिए पेशकश की थी अपनी राइवलरी को छोड़ते हुए। आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं अगला गीत, रवि साहब की आवाज़ में थोड़ा जोश भरेगा, क्योंकि वीकेंड का माहौल है, कुर्सियों पे बैठे रहिए लेकिन साथ साथ थिरकते भी रहिए, सुनते रहें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 124 रुपीज एंड 20 पैसे। आप SBI यूनो मोबाइल ऐप के जरिए 75 पाउंड का वाउचर भी एवरी डे रिसीव कर सकते हैं अगर आप 1000 पाउंड का ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अलावा 1 ग्राम का गोल्ड भी आपको मिल सकता है अगर आप 2000 के ऊपर का भी ट्रांजेक्शन करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Scan your Tesco club card and get match ready with sizzling deals. Get a 12-pack of Birra Moretti, now just £12, down from £18.25.
3: Club card accepted.
2: Because every little helps. Drink aware 18 plus, majority of larger stores, 330ml bottles, ends 13th of July. Club card or app required.
4: Like a gold. वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
5: ड्रीमिंग ऑफ ओनिंग अ प्रॉपर्टी इन दुबई? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
6: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
7: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
4: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
3: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
8: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
3: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
8: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
3: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
8: Visit Kajal's Couture. Southall.co.uk
9: Southall Travel की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। Southall Travel का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल Southall Travel ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
10: Southall Travel, at all protected.
11: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
12: Chai break go ya busy work day, sabko chahiye ek perfect cup of chai.
13: Aur ab Royal Chai line है स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
12: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
13: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
12: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
13: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
14: Lotto from the National Lottery now gives you 2 chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. 1 ticket, 2 chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you.
15: See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
16: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as DLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/DLC.
17: Like a goal. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो laikagold.com पे
18: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
19: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
20: लागा गोरी गुजरिया से

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Versatile funkar Rafi saab ki awaaz mein Ganga Jamuna film ka gaana sun rahe the aap. और ये पहली मुख्य हिंदी फिल्मों की धारा में जुड़ने वाली ऐसी फिल्म थी जिस फिल्म में हिंदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की अवधी और भोजपुरी भाषा का भी खुलकर इस्तेमाल किया गया था। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री वैजयंती माला, जिन्होंने धन्नो का किरदार निभाया था, इस फिल्म के लिए अपनी बोली को और बेहतरीन किया। और दिलीप कुमार साहब तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे ही जाते थे। हालांकि दिलीप कुमार साहब और नासिर खान, जो उनके रियल लाइफ ब्रदर हैं, इनके बीच की भी केमिस्ट्री बहुत ही खूबसूरत नज़र आई। फिल्म ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए। उस दौर की 1961 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म साबित हुई। और उसके बाद लगभग डेढ़ दशक बाद दीवार और त्रिशूल जैसी फिल्में भी आईं जो दो भाइयों के बीच के टकराव को दर्शाती हैं। इस कॉन्सेप्ट की कहा जा सकता है कि नींव रखने वाली जो फिल्म थी वो थी गंगा जमुना, जिसका गीत अभी आपने सुना। अब आपको हम मुकेश साहब की दिल को छू लेने वाली आवाज़ में वही गाना सुनाते हैं जिसे आप हमेशा सुनना पसंद करते हैं। सुनते रहिए
0: ऑन राग विद गोल्डन राग।
3: मैंने

0: कब।
1: मुकेश साहब की आवाज में आनंद, फिल्म का गाना सुनने में इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कड़कती धूप में किसी घने पेड़ के नीचे उस छांव में शेड में आप बैठ कर ही गाना सुन रहे हो। अगला गाना दीवानी लड़कियों के लिए है, क्योंकि खुद आशा ताई और अमित कुमार साहब चीख चीख कर कह रहे हैं।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें कि सिंगर हरी हरन एक बार फिर से वापस लौट रहे हैं यूके एक स्पेशल वन ऑफ इवेंट जो कि हो रहा है सैटरडे 4 जुलाई एट रॉयल फेस्टिवल हॉल होस्टेड बाय बीना मिस्त्री। अगर आपको अपनी टिकट चाहिए तो आप विजिट कीजिए southbankcenter.co.uk पर, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
3: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a Gold in London, the Midlands and Manchester. Hey!

0: रफी साहब की आवाज में देवी फिल्म का ये खूबसूरत गीत, और इसके बाद हम आपको अगले सॉन्ग के बाद बताने जा रहे हैं। आप बताएं और हम सुनाए वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड इंतजार कीजिए, बहुत ही अच्छा होने वाला है और बहुत मजा आने वाला है। अगला गीत लता जी और रफी साहब की आवाज में।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के थ्रू आपको

0: तुझे जीवन की डोर से बांध लिया, असली नकली फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना शंकर जयकिशन साहब का शानदार संगीत। और इसी के साथ आपको बता दें भाई, अगले घंटे आप बताएं और हम सुनाए वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड क्या है। तैयार हैं आप लोग अपने अपने दिमाग की बत्ती जलाने के लिए? तो बहुत ही आसान सा है वो। आज का गोल्डन वर्ड है चल, चले, चलो, चली या फिर चलूं। एक बार फिर से, चल, चलें, चलो, चली या फिर चलूं। इसमें से कोई भी वर्ड आपको आपके गानों में से मैं शामिल होता हो तो आप हम तक जरूर पहुंचाएं।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
3: Latke halo ne nandala.
2: Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue.
3: Meetha khara, khara.
2: Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
4: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
5: Live in London.

0: Experience an unforgettable evening with the legendary Hari Haran. Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
1: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिने सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता।
2: की कह रहे हो?
1: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
2: की कह रहे हो?
3: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
2: पर टिल्लो ने काला कोट एवे नहीं पाया।
1: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ए लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
4: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
5: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
6: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: भाई कमाल है आप लोगों का, आप लोगों के लिए तो तालियां बजनी चाहिए। चल थीम से रिलेटेड आप बताओ, हम सुनाने वाली थीम के लिए इतने प्यारे प्यारे गीत आप लोगों ने भेजे हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो गए हैं भाई कौन से गाने प्ले किए जाए। मुकेश साहब की आवाज में संबंध फिल्म का ये गाना हम तक पहुंचाया था अपनी फरमाइश की पिटारे को से निकाल कर इस गाने को हम तक नीलकंठ जी, जगदीश जी, निर्मला जी और कीर्ति जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का ही इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए। कहीं दूर मत जाइए, चलने वाले गाने चलते ही रहेंगे।
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: इससे पहले कि अगला गीत सुनाएं, हम आपको बताना चाहते हैं लाइका रेडियो नेटवर्क ने हाथ मिला ली है, पार्टनरशिप कर ली है प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन के साथ। डिटेल चाहिए तो आप विजिट कीजिए laikaradio.com पर।
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: जिंदगी वहाँ सेक्टर माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
3: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
3: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
3: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 Greens by Danube Prime location
3: High appreciation
2: In Dubai
4: Kajal's Couture For every celebration Every moment And every unforgettable entrance
5: Discover Kajal's Couture Southall The grand new destination for elegance At 159 The Broadway Southall UB1 1LR
4: Explore exquisite bridal wear Glamorous party wear Beautiful jewellery Accessories And stylish outfits for men and women
5: Plus Leica listeners get 10% off On bridal wear and party wear Open 7 days a week.
4: Kajal's Couture, Southall, where every occasion finds its perfect style.
5: Visit kajalscouture.co.uk.
6: Are we there yet?
7: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
8: Relax, I've booked the Uber already.
7: How? My roaming isn't even working yet.
8: I switched to Simsy before we left London.
7: Simsy? Since when are you the tech expert?
8: Since I decided I want a stress-free holiday.
9: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
10: T's and C's apply.
11: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हस्बंड जी
12: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
13: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
12: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
13: Call 0208 706 0915 for a free, no-obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
12: Cashback Remortgages. Is the broker that gives you back.
14: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 02037736333 मंत्रा हॉलीडेज What's your travel mantra?
15: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
16: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
15: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
17: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
18: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games and a bit of Ye Yavo. Only on Leica Gold.
19: Aap sun rahe hain Golden Rag Anurag ke saath.

0: चलो सजना, जहाँ तक घटा चले, मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत और ये गीत हम तक पहुँचाया है टोची पनेसर जी, उला जी, स्तकु जोशी एंड भारती जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 124.64 पाकिस्तानी रुपीस, 367.26 श्रीलंकन रुपीस, 443.72 बांग्लादेशी टका, 162.38 अफगान अफगानी, 85.32 एंड 1 यूएस डॉलर 1.32.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £99.60 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Forgotten memories refreshed. Leica Gold.

0: चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए महेंद्र कपूर साहब की आवाज में गुमराह फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत हम तक पहुंचाया है हंसा वोरा जी, संतोष जी, अर्जन जी, हंसा मिस्त्री जी और चंदू शाह जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अगला गीत किसकी फरमाइश के पिटारे से निकल कर आ रहा है उनका नाम लेते हैं, अमित कुमार सैनी, प्रशांत और मुकेश तन्ना जी। गाने के बोल हैं चलते चलते और फिल्म का नाम भी है चलते चलते। लेकिन चलते चलते आपको ये भी बताएंगे कि अगला घंटा है बड़ा ही स्पेशल। हमने आपके लिए गोल्डन राग के 3 ऑप्शंस पहले से ही तैयार कर लिए। फिलहाल अगला गाना एंजॉय कीजिए किशोर कुमार साहब की आवाज़ में। और बेशक आपकी नाराज़गी भी जायज़ है क्योंकि बहुत सारे गाने आप लोग भेजते हैं और हम शामिल कर पाते हैं चंद, क्योंकि समय की बाध्यता जो होती है। चलिए सुनते रहें और एंजॉय करते रहें सैटरडे।
1: लाइका गोल्ड।

0: Andisha Rice Live Tasting on the 23rd and 24th of May at Pick and Save, Kenton Road, Harrow, HA38BX. Come down and taste the difference.
1: London, you asked and it's happening. Aditya Gadhvi Garba Tour UK 2026.
2: Lattuke halone nandala.
1: At Watford Colosseum on Saturday, 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday, 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadhvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadhvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
3: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100 Atoll Protected.
4: London walo dhyan se sun lo ke furniture ki dhamakedar flash sale aa gayi hai. Shandar Italian aur German design wale bedroom aur dining furniture पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
5: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिन्हें सब नू हसा हसा के लोट पोट कीता, ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
6: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिनो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिलो फिर कहेंगे
7: पर टिलो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
5: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
1: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
8: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
1: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a

0: मनहर उदास साहब और साधना सरगम जी की आवाजों में राम लखन फिल्म का ये गाना है। ये गाना जितना सुनने में अच्छा है उतना ही खूबसूरती के साथ ये गाना पिक्चराइज भी किया गया। लखन भैया अपने राम भैया और होने वाली भाभी को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। जल्दी से बताएंगे आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शन, जल्दी से उसके कायदे प्लस कानून भी बता देते हैं। तीन ऑप्शन गानों के होंगे, जिन्हें जो भी आपको ऑप्शन पसंद आता है उसे वोट की तरह कास्ट करें हमारे स्टूडियो के नंबर पर, और जिस ऑप्शन को लेकर सबसे ज़्यादा वोट्स हमें रिसीव होंगे वो गाना बनेगा हमेशा की तरह आज का भी गोल्डन राग। तो पेश हैं आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस आपके साथ। ऑप्शन ए है हमदम मेरे मान भी जाओ फ्रॉम द फिल्म मेरे सनम। ऑप्शन बी है चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, फिल्म का नाम है चौदहवीं का चांद। ऑप्शन सी है यही है तमन्ना, फिल्म का नाम है आपकी परछाइयां। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑप्शन ए है हमदम मेरे मान भी जाओ, फिल्म का नाम है मेरे सनम। ऑप्शन बी है चौदहवीं का चांद हो, फिल्म का नाम है चौदहवीं का चांद। ऑप्शन सी है यही है तमन्ना, फिल्म का नाम है आपकी परछाइयां। वोटिंग लाइन्स हो चुकी हैं ओपन, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें, और थोड़ी देर में हम आपको बात कराएंगे T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप को कवर कर रहे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कमल जी से। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए वीकेंड वाली पाठशाला। अगला गाना बड़ा ही खूबसूरत।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: वन पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहा है 124 रुपीज एंड 20 पैसे। इसके अलावा अगर आप SBI योनो ऐप से या फिर ब्रांच पे जाकर अपने पैसे को भेजते हैं तो आपको मिल सकते हैं 75 पाउंड्स का गिफ्ट वाउचर। सेंड कीजिए मनी 1000 पाउंड से ज्यादा तो आपको 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन भी मिल सकता है, जो कि एवरी वीक हम देंगे। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold, 10:35 a.m.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: आने वाले मैचेस पर रोशनी डालते हुए पनामा और इंग्लैंड का मैच 10 बजे, इसके अलावा क्रोटिया और घाना के बीच मुकाबला, और केप वर्दे और सऊदी अरेबिया के बीच भी मुकाबला ग्रुप एच का।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
2: ये है
4: लाइका गोल्ड।
5: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
6: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
7: Shri Jagannatha Society, UK warmly invites you to Rath Yatra 2026, a divine celebration of Lord Jagannath. Saturday, 18 July, Subah 10 baje se sham 4 baje tak. Navnath Center, Hayes, UB3 1AR mein. Bhajans, Aarti, Sacred Rath Pulling aur Prasad ka Laab zarur le. Event free hai, lekin registration mandatory hai. Free parking bhi sirf registration ke saath available hogi. Register now at shrijagannath.uk/events/rath-yatra2026. Jai Shri Jagannath.
8: Dreaming of paradise?
9: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
10: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
9: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923 883 100. That's 01923 883 100.
10: At all protected.
4: after a sold-out show at the Royal Albert Hall. Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
11: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
12: Lights on, shutters up, staff ready.
11: But today's customers don't start on the high street.
12: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
11: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
12: They walk into your competitors.
11: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
12: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ravi sahab, Lata ji ki awazon mein Adalat film ka प्यारा सा नगमा भी आपने सुना। एक बार फिर से आपके लिए हम रिपीट कर रहे हैं आज के गोल्डन राग के ऑप्शंस, जो आपको पसंद हो उसे वोट की तरह कास्ट करें और अपने पसंदीदा गाने को विजयी बनाएं। ऑप्शन ए है हमदम मेरे मान भी जाओ फ्रॉम द फिल्म मेरे सनम, ऑप्शन बी चौधवी का चांद हो, फिल्म का नाम है चौधवी का चांद, ऑप्शन सी है यही है तमन्ना, फिल्म का नाम है आपकी परछाइयाँ। वोटिंग लाइन्स ओपन है, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें और अपने गाने को जीतता हुआ देखें, सुने। अगला गाना हम आपको सुनाते हैं, विंटेज गोल्ड वाला गाना जो आप विंटेज गोल्ड शो में अक्सर सुना करते हैं, गीता दत्त और रफी साहब की आवाजों में।
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
3: On Rag with Golden Rag.

0: प्यासा फिल्म का गाना सुनाने के बाद आपको सीधे लिए चलते हैं वुमेन्स क्रिकेट का वर्ल्ड कप T20 का अपडेट दिलाने के लिए सीधे हमारे करेस्पॉन्डेंट कमल प्रभाकर जी के पास। हेलो कमल जी, आप ऑन एयर हैं, आप हमें सुन सकते हैं?
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
0: Hello.
1: Cricket updates presented by Kamal Prabhakar are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
2: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
0: एक बार फिर से हम ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कमल जी से बात हो पाए हमारी। एक बार फिर से कॉल लगाया जा रहा है। हेलो कमल जी से बात हो रही है? कमल जी बात सुन, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं?

0: लगता है फिलहाल हैं कमल जी व्यस्त, लेकिन थोड़ी देर में उनसे फिर से संपर्क होगा और आपको सीधे सूरत हाल बताएंगे क्या चल रहा है इस वक्त वुमेन्स वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में।
1: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
2: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 10% on full week summer camp bookings with code LEICA10 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
3: Scan your Tesco club card and get match ready with sizzling deals. Get a 12-pack of Birra Moretti, now just £12, down from £18.25.
4: Club card accepted.
3: Because every little helps. Drink aware 18 plus, majority of larger stores, 330ml bottles, ends 13th of July. Club card or app required.
5: Yeah, like a gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
6: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड
6: विजिट travelhubworld.com Come.

0: फूड कंटेनर्स
1: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन
2: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
3: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
2: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय टैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
3: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
2: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
3: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
2: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
3: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 Greens by Danube Prime location
2: High appreciation
3: in Dubai
4: Kajal's Couture for every celebration every moment and every unforgettable entrance
5: Discover Kajal's Couture Southall the grand new destination for elegance at 159 the Broadway Southall UB1 1LR
4: Explore exquisite bridal wear glamorous party wear beautiful jewelry accessories and stylish outfits for men and women
5: Plus Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear Open 7 days a week.
4: Kajal's Couture, Southall, where every occasion finds its perfect style.
5: Visit kajalscouture.co.uk.
6: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
7: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
8: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
9: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
8: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
4: टीचर्स ट्यूटर्स और एजुकेटर्स के लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी रोबो थिंक यूके एक्सपैंड कर रहा है बिकम अ कंफर्म्ड फ्रेंचाइज पार्टनर एंड रिसीव अ रोबोटिक्स kit package worth over £7,500. Parents can also save 10% off on full week summer camps with code LIKA10. Visit book.robothink.co.uk/LIKA.
10: Be part of a historic grand opening.
4: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
10: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
4: Departure 5th of September. Call now on 02-03-773-633.
10: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
11: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
12: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
13: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
4: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 10% on full week summer camp bookings with code LEICA10 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
14: बात नहीं हो पाई हो सकता है कि नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो लेकिन 27th मैच ग्रुप 2 का ब्रिस्टल में चल रहा है इस वक्त वेस्ट इंडीज वुमेन्स और आयरलैंड वुमेन्स के बीच में जहां 15.4 गेंदों का खेल हो चुका है 5 गेंदों का हो चुका है बल्कि 95 रन एंड 5 विकेट का नुकसान और दूसरा मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 घंटे 51 मिनट बाद होगा मैच स्टार्ट
15: Star Track of the Hour sponsored by Star Tours Coach Eurostar या Flight आप चूज करो अपना स्टाइल बाकी सब Star Tours एक्सपीरियंस संभाल लेता है विजिट StarTours.co.uk

0: गाता रहे मेरा दिल, लता जी और किशोरदा की आवाज में। गाइड फिल्म का ये गाना हमेशा खूबसूरत लगता है जब भी आप इसे सुन रहे हो। और इसी साथ बता दें भाई, अब हो चुकी है वोटिंग लाइंस बंद, चुना जा चुका है आज का गोल्डन राग। देखते हैं आपने भारी मत देकर किस ऑप्शन को विजय बनाया है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 124.65 पाकिस्तानी रुपीस, 367.29 श्रीलंकन रुपीस, 443.75 बांग्लादेशी टका, 162.39 अफगान अफगानी, 85.33 एंड 1 US डॉलर 1.32.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £99.60 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
2: Aap sun rahe hain Golden Rag Anurag ke saath.

0: आफताब हो।
1: रवि साहब की आवाज में चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, रवि साहब का संगीत और इंटेंस एक्टर गुरुदत्त साहब का बेजोड़ अभिनय, और इस गाने को सबसे ज्यादा मत देकर, सबसे ज्यादा वोट्स देकर आप सबने बनाया है आज का गोल्डन राग। तो जल्दी जल्दी से नाम लेते हैं, हमेशा अव्वल रहने वाली संतोष जी ने सबसे पहले इस गाने को लेकर वोट किया था, इसके अलावा रवि सोनाही, हंसा मिस्त्री जी, मिसेस इकबाल बेगम, विनोद जी, जगदीश जी, नौशाद अली जी, निर्मला जी, क्रीट निर्मल, अमिता, अर्जुन, अयूब चौहान साहब, सुमित चौरसिया, पंकज वर्मा, प्रीति एंड सौरभ पटेल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इतना एंगेजमेंट बढ़ाए रखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए और लाइका परिवार से जुड़े रहने के लिए। अगला गाना जवानी दीवानी फिल्म से किशोर दा की आवाज़ में, और नेक्स्ट होंगी सरिता जी खूबसूरत गीतों के साथ। अब होगी आपसे मेरी मुलाकात कल, यानी कि सुपर संडे वाली महफिल में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।
2: दिस इज लाइक अ गोल्ड।
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
4: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स your travel mantra?
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
7: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
8: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
7: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
8: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
10: हेरल्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ इको friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208 507 7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step

0: दो गीत आपने सुने बैक टू बैक और दोनों ही गीत बहुत खूबसूरत थे। पहला गीत मैंने सुना था किंग अंकल फिल्म से, 1992 की फिल्म थी। दो आवाज़ें आपने सुनी, लता मंगेशकर एंड नितिन मुकेश जी की। और दूसरे गीत में भी नितिन जी का साथ दिया, साधना सरगम ने, और फिल्म का नाम था खून भरी मांग, जो 1988 में आई थी। उम्मीद करती हूँ दोनों गीत आपने पसंद किए, और आज इन दोनों गीतों को शामिल करने का एक मकसद ये भी है कि आज नितिन मुकेश अपना बर्थडे मना रहे हैं। 27 जून 1950 में उनका जन्म हुआ था। वो हिंदी फिल्म संगीत में अपनी भावपूर्ण आवाज़ और भजन बहुत इन्होंने गाए, उसके लिए मशहूर हैं। और शुरुआती जिंदगी में नितिन मुकेश का जन्म मशहूर गायक, आप सभी जानते हैं, मुकेश जी के घर हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत का माहौल मिला और उन्होंने अपने पिता से ही गायन की शिक्षा भी ली थी। उन्होंने 1970 के दशक से बॉलीवुड में गाने शुरू किए थे। तब ज़्यादा नहीं उनकी आवाज़ सामने आई थी, लेकिन कुछ एक गीत मशहूर हुए। 1980s और 90s के दशक में उन्होंने बहुत से लोकप्रिय गीत गाए, जिनमें से दो गीत तो आपने सुन लिए। उन्होंने बहुत से संगीतकारों के साथ काम किया है, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, बप्पी लहरी, नदीम श्रवण, और उनकी आवाज़ कई सुपरहिट फिल्मों में सुनाई दी है। माय नेम इज लखन में भी आपने सुना उनका लोकप्रिय गीत, जिंदगी की ना टूटे लड़ी कैसे भूल सकते हैं, देन हंसते हंसते आपने सुन लिया। इनकी वाइफ है निशी मुकेश एंड इनके बेटे नील नितिन मुकेश, आप सभी जानते हैं कि ही इज़ एन एक्टर, तो उनकी भी बहुत से गीत हैं और ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सिंगर। एंड कई बहुत सारे स्टेज शोज़ किए हैं उन्होंने, भजन और भावपूर्ण गीतों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। अपने पापा का नाम बहुत लेते हैं जब भी वो स्टेज पर आते हैं या किसी रियलिटी शो में आते हैं, और अपने पापा से वो बहुत इंस्पायर थे एंड उनके गाए हुए गीत भी वो बड़ी खूबी के साथ निभाते हैं विथ फुल एक्टिंग। बट डिड यू नो कि वो फर्दर स्टडीज़ के लिए लंदन आए थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया था, लेकिन पढ़ाई में रुचि ना होने के कारण वो बीच में ही भारत लौट गए थे। गायक बनने से पहले उन्होंने मशहूर निर्देशक ऋषि केश मुखर्जी के साथ फिल्म नमक हराम में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया था। एंड यंग जब थे बहुत, तो वो सिगरेट पीने लगे थे, धूम्रपान का शौक रखा उन्होंने और पीने लगे, लेकिन उनके पिता महान गायक मुकेश जी ने उन्हें कहा कि अगर करियर बनाना है तो उसे छोड़ना होगा, तो उन्होंने छोड़ दिया। उनकी शुरुआती समय आसान नहीं था, उन्हें कई स्टेज शोज उन्होंने किए, लेकिन धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। सीधे बड़ी फिल्मों में शुरुआत उनकी नहीं हुई थी। और भी बहुत सी बातें हैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन पहले ज़रा देखा, भूल गई ना सरिता, आपसे पूछा ही नहीं कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं और अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करें, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी भी। आजकल मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो यही कहूँगी कि तभी घर से बाहर निकलिएगा अगर बहुत ज़रूरी हो। अपने आप को धूप से बचा कर रखिएगा एंड डिहाइड्रेट ना हो, पानी पीते रहें या कुछ भी सॉफ्ट ड्रिंक्स भी अगर पीना चाहें तो पिएं ज़रूर, लेकिन पानी पीना बहुत ज़रूरी है। सो गर्मी से बचने के लिए अपने को ठंडक वाले एरिया में रखिए ना, घर का भी वो कोना चुनिएगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। चलिए, बहुत सी हिदायतें होगी और अब बढ़ते हैं आगे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई, इनके जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो your £1 in British sterling can get you up to 224 rupees and 15 paisas. But it depends कि कितना amount आप ट्रांसफर करा रहे हैं। जितने ज्यादा होंगे उतने अच्छे पैसे मिलेंगे आपको, उतना अच्छा रेट मिलेगा। Send money to India via SBI YONO app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai.
3: Like a gold.
4: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: भी आज के मैचेस के बारे में बता दें, पनामा और इंग्लैंड के बीच मैच होगा आज रात 10 बजे शुरू होगा, क्रोशिया एंड गाना के बीच में मैच होगा आज रात को 10 बजे ही, एंड इसके अलावा इजिप्ट एंड ईरान के बीच मैच हो रहा है आज शाम हो चुका है ये मैच, एंड वन ऑल से जीते हैं एंड वन ऑल रहा मैं इनका स्कोर, एंड न्यूजीलैंड और बेल्जियम के बीच में मैच हुआ आज एंड 5-1 से बेल्जियम 5 एंड न्यूजीलैंड 1। सो मैचेस होते रहेंगे, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन एक सूचना और दे दें कि डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 minutes free legal advice with our sponsor Rec Law if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rec Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
5: You asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026. Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
6: Location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: Jai Shri Swaminarayan. Save the date. Sunday 19 July 2026. Varshik Rath Yatra Mate. Bhaktone Marshe Bhagwan Shri Jagannath Ji Na Rathne Harrow Ane Brentney Streets Par Khenchvano Pavitra Avsar. Yatra Ni Shuruat Thashe SKSS Temple Kenton Harrow Thi Ane Samapan Thashe Shri Swaminarayan Temple Stanmore Par. Vadhu Mahiti Mate बन्ने टेम्पल्स ना सोशल मीडिया अने वेबसाइट्स sksst.org और stanmoretemple.com विजिट करो. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स Leica Radio. जय श्री स्वामीनारायण.
11: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं.
12: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana, original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
13: Welcome to the jungle.
14: Film? Bilkul fake.
13: Hamare film army wali.
2: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
6: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
3: स्टार कास्ट है
6: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल एंड यूथ स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
4: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
6: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
13: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
14: किस लिए फिल्म में?
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई। फ्रॉम ब्रेथ टेकिंग वेडिंग ज्वेलरी टू द फाइनेस्ट डायमंड रिंग्स, डू कम इन एंड सी अस at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 0208767-2142.
1: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: ऑल द लेजेंड्स इन दिस सॉन्ग, नितिन मुकेश के साथ किशोर दा, लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ें आपने सुनी। ब्यूटीफुल सॉन्ग, और ऐसे गीतों को कभी कभी जगह मिलती है प्रोग्राम में, तो आज मैंने प्ले किया है। मुझे उम्मीद है आपने पसंद किया और आप तक पहुंचाया।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Ye hai Laika Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: Another beautiful song, नितिन मुकेश की आवाज़ में। इस गीत को भी बहुत कम जगह मिलती है। कविता कृष्णमूर्ति साथ दे रही हैं फ्रॉम द फिल्म ईश्वर।

0: What a beautiful song. इतने अरसे के बाद सुना और बहुत पसंद भी आया और मेरे साथियों को बहुत पसंद आ रहे हैं सारे गाने. विजय गनोवा जी, दिव्या फ्रॉम हैरो, संध्या भावसर जी, वत्सला जी, तोची जी, अर्जुन जी, अमिता, संतोष फ्रॉम हैरो, सहर, फाल्गुनी, मुकेश इन लिस्बन एंड पुष्पा चौहान जी इन हैरो, इंतशाप, शहनवाज एंड रानी जी, जगदेश जी इन बुशी, दिनेश पोपट जी, फरजाना जी और आपका नाम नहीं आया है, कौन है आप, रंजना कुकोटिया, रंजना जी थैंक यू, हंसा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और बाकी के नाम मैं थोड़ी देर बाद ज़रूर मेंशन करूँगी.
1: Tasty track of the hour, sponsored by Koka Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store. You are by downloading the Leica Radio mobile app now. Sarita Sabharwal with your weekend classics. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Need anything from Tesco? Get match ready with 24 cans of Pepsi Max. Now just £7.50, down from £11.25.
3: Club card accepted.
2: Because every little helps. Majority of larger stores ends 30th of June, excludes Northern Ireland. Club card or app required.
4: Leica Gold.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
6: विजिट TravelHubWorld.com.
8: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
9: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिने सबनू हसा हसा के लोटपोट कीता.
10: की कह रहे हो?
9: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता.
10: की कह रहे हो?
11: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
10: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया.
9: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर द स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ए लाफ्टर फेस्टिवल है.
12: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
13: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5 कोर्स लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
14: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
15: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
14: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
15: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
14: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
15: Visit Kajal's Couture.
16: જર્મની સાથે
17: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
16: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
17: કોલ 0208900-2323 ધ સ્ટાર ટૂર.
16: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
18: ટેસ્ટી સ્વાગ એન્ડ સ્વીટ ચમ, એવરી સ્પૂન ફીલ્સ લાઈક અ ટ્રોપિકલ વોર્મ. મેક પુરી એન્ડ આમરસ ઓર milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
19: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
18: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
2: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts,
3: look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/DLC.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
4: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवरटाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
7: Hello, wake up with me, Kajal, on the breakfast show where I take you down memory lane, get inspired by morning mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. Leica Gold and Leica Radio Midlands.

0: नितिन मुकेश, अलका याग्निक एंड शबीर कुमार की आवाज़ें शामिल थी इस गीत में, जिसे मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म तेजाब। एंड नितिन मुकेश जी इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। नितिन गॉट हिज अर्ली ट्रेनिंग फ्रॉम हिज पापा, बट साथ में पंडित जगन्नाथ जी एंड जगन्नाथ मिश्रा जी, उस्ताद फियाज अहमद खान साहब जैसे एंड छोटे इकबाल साहब से उन्होंने सीखा था। एंड जैसे मैंने पहले भी बताया, ऋषिकेश मुखर्जी के साथ उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। देन हिज डेब्यू एज ए सिंगर केम विद द फिल्म कॉल मेरा नाम जोकर इन 1970, फॉलोड बाय सबसे बड़ा सुख इन 1972, और उसके बाद दूसरी सीता, त्रिमूर्ति जैसी फिल्मों में उन्होंने गीत गाए। उम्मीद करती हूँ गीत आपको पसंद आ रहे हैं।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you today. Kya rate hai bhai? 1 pound

0: लता मंगेशकर एंड नितिन मुकेश जी की आवाज़ों में गाया हुआ ये गीत मैंने फिल्म मेरी जंग से चुना था, 1985 की फिल्म थी। एंड इस सावर का आगाज़ हुआ सिलसिला है प्यार का के एक बहुत ही प्यारे से दो गाने के साथ, अलका याग्निक एंड कुमार सानू ने अपनी आवाज़ें दी थी। और इन गीतों के ज़रिए हम याद कर रहे हैं NN सिप्पी साहब को, जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। 27 जून 1931 में इनका जन्म हुआ था। प्रोमिनेंट इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, उनका वर्क जो है कैसा, कितना काम किया उन्होंने, कितनी प्यारी प्यारी फिल्मों को या तो डिस्ट्रीब्यूट किया या फिर उन्हें प्रोड्यूस किया, लाइक वो कौन थी, गुमनाम, चोर मचाए शोर, फकीरा, कालीचरण, घर, सरगम, मेरी जंग और बहुत सारी फिल्में हैं। इनके बारे में भी जानकारी दूंगी जैसे जैसे समय इजाजत देगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you up to 124 rupees and 15 paisas. And agar aap paisa bhej rahe hain branch mein jaake SBI Yono app ko use karke, then by end of June se pehle agar aap jayenge to you will be in to win a 75 pounds voucher every day when you send over 1000 pounds and a 1 gram gold coin every week when sending over 2000 pounds. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold, 10:35 a.m.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: Right, way Egypt and Iran ke beech match ho chuka hai aaj 1-1, and aaj hi New Zealand and Belgium ke beech mein match hua 5-1 se, Belgium jeete, and Panama and England ke beech mein match ho raha hai raat ko 10 baje, and same Croatia and Ghana ke beech mein bhi मैच हो रहे हैं आज शाम 10 बजे। इसके साथ ही एक सूचना कि डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर, कौन है वो, रैक लॉ, इफ यू मेंशन लाइका।
1: दिस अपडेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय रैक लॉ सॉलिसिटर्स, कॉल 0203 345 2000 और विजिट raklaw.co.uk। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
4: And it's 20 minutes till next kickoff.
5: Go, go, go!
6: Feed the gang.
5: Pop to Co-op.
7: Co-op members get 2 pizzas and 4 Budweisers for a £5.
8: Co-op. Owned by you, right by you.
9: Ends 21st of July. Selected products subject to availability. Co-op group membership required. £1 joining fee. 18 plus. Please drink responsibly. See co-op.co.uk/summer.
1: Sarita Summerwall with your weekend classics.
10: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 Our line.
11: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
12: High appreciation.
13: In Dubai.
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
14: Welcome to the jungle.
15: Film? Bilkul fake.
14: Hamari film army wali.
16: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
15: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
14: और स्टार कास्ट है
15: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
17: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
15: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ.
18: चलो तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
19: किस लिए फिल्म में.
20: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
21: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
20: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
21: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
20: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
21: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
22: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
23: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
22: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
24: Sonatours.co.uk. This September, witness the opening of the BAPS Mandir in Paris on a 4 or 5 day tour. Book your journey of blessings and sightseeing with Sonatours. Call 0208-951-0111.
25: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting, but it's as simple as DLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/DLC.
26: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
27: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: In beautiful geeton ke saath hum yaad kar rahe hain producer distributor NNCP saab ko. Ye geet maine suna tha from the film Fakira 1976 mein aayi thi ye film. Aur isi ke saath apne sabhi sunne walon ko bata dun ki competition mein hissa lena hai to zara ध्यान से सुन लीजिएगा. लाइक अ रेडियो नेटवर्क टीम अप विद जेज एंटरटेनमेंट फॉर अ चांस फॉर यू टू विन टू टिकट्स टू द गुजराती स्टेज कॉमेडी सखना रहे जो हस्बैंड. सखना रहे जो हस्बैंड एंड इट फीचर्स लीना शाह एंड समीर शाह. इट टेक्स प्लेस ऑन संडे 28 जून, कल को होने वाला है, 2:30 PM एंड 7 PM एट पीपल Center in Leicester. It's PEEPUL, people. And send the word husband to the studio WhatsApp now. जी हाँ, अगर आप तभी हिस्सा लीजिए अगर आप जाना चाहते हैं Leicester. And these tickets are valid for 7 p.m. show at Leicester venue only. And winners will be able to collect tickets from the venue reception on the evening of the show. TNC apply. और जल्दी से मैं बता दूँ आपको कि आपने सिर्फ एक वर्ड लिखना है. अगर आप लेस्टर जा सकते हैं ये शो देखने के लिए, जिसका नाम है सखना रहे जो हस्बैंड. सो हस्बैंड लिखकर जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और आपकी एंट्री मानी जाएगी कंपटीशन में. ठीक है.
0: सरिता सबरवाल, द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइक अ गोल्ड. Women's Cricket Updates, presented by Carmel Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
3: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
2: भाई, हमने कमल जी को फोन मिला दिया है और कमल जी अभी हमें बताएंगे कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है क्रिकेट के मैदान में. कमल जी वेलकम, एंड हमें जल्दी से बताइए कि क्रिकेट के मैदान में वेस्ट इंडीज़ एंड आयरलैंड की विमेन क्या कर रही हैं. बड़े नेक टू नेक चल रही हैं जी. कैसे हैं आप? हेलो कमल.
4: बस ठीक है सरिता जी, जी आप कैसे हो?
2: मैं बिल्कुल ठीक. बताइए क्या हो रहा है वेस्ट इंडीज़ एंड आयरलैंड की विमेन के बीच में?
4: बहुत इंटरेस्टिंग गेम हो रहा, बहुत क्लोज. West Indies 128 for 7, and अभी Ireland chase कर रहा है, and they are chasing well. 23 balls में 17 runs थे उनको. So I think Ireland might just do it, and what a great win for them it would be.
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
4: हाँ जी, and
2: they need 13 runs now in 22 balls. Yes.
4: Yeah, that's right. और फिर उसके बाद सरिता जी, we have a very exciting game. Which is England versus New Zealand.
2: Yes, yes, yes.
4: Yeah, वो भी बहुत अच्छी गेम होगी और very close game होगी, because that is both of them needs to perform and get, you know, good runs on that.
2: जी.
4: So and then there was Pakistan Netherlands again earlier. So Pakistan 126 for 6, Netherlands 89 in 18 overs. So Pakistan के पहले पॉइंट्स मिले उनको टूर्नामेंट के.
2: जी, 37 रन से जीत गए. हाँ जी
4: जी जी जी जी. सो देन दैट इज गुड फॉर टुडे, एंड विल गिव यू द अपडेट फॉर द अदर्स. बट सरिता जी, टुमारो वी गॉट अ मैसिव गेम व्हिच ऑस्ट्रेलिया इज टेकिंग ऑन इंडिया.
2: जी, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में मैच होने वाला है. जी,
4: कल को होगा. एंड देन आफ्टर दैट वी गॉट, बिफोर दैट वी गॉट साउथ अफ्रीका बांग्लादेश. So morning 10:30 is South Africa Bangladesh, and then 2:30 Australia India. So it will be a great points to have for the teams. India's game is very important because they'll need to win this to go forward, and South Africa as well.
2: जी, दोनों ही टीम बहुत अच्छी हैं. लेट्स सी, आप हैं ना, हमें बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे. थैंक यू कमल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय.
0: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
3: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 10% on full week summer camp bookings with code LEICA10 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
0: This is Sarita Sabharwal on Leica Gold.

0: मुकेश एंड लता जी की आवाज़ें शामिल थी फिल्म पारस के इस गीत में, और इस फिल्म को भी NNCP साहब ने प्रोड्यूस किया था। NNCP मैरिड चंपा नारी सिप्पी, और ही फैमिली लिव्ड इन मुंबई एंड ही डाइड ऑन नवंबर द 7, 2006 में इन मुंबई एट द एज ऑफ 75 एंड 20 साल तक उन्होंने ही सर्व्ड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन मोशन पिक्चर डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन। ही वॉज द मेंटर ऑफ सो मैनी, यू नो, जैसे गुमनाम के लिए ही लॉन्च द फेमस एडिटर वमन एंड गुरु, एंड दे रिमेन ऑन टॉप ऑफ देयर ब्रैकेट टिल द अर्ली 90s। शतरंज में वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेयर को प्रोडक्शन एंड अ रेयर मूवी विच कॉस्टेड अमाउंट ऑफ 1 crore दैट टाइम। चोर मचाए शोर में रविंद्र जैन को ये वापस लेकर आए थे एज ए कंपोजर। ऐसे बहुत सारे फकीरा में ही एक्टेड एज ए कमर्शियल लॉन्च पैड फॉर शबाना आजमी। ऐसी बहुत सी बातें NNCP के साथ जुड़ी।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you today at this minute. Indian rupees 124.55, Pakistani rupees 367.71, Sri Lankan rupee 443.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने, पहला गीत था 1942 अ लव स्टोरी का और दूसरा गीत था फिल्म सागर से चुना। दोनों का संगीत तैयार किया था महान संगीतकार आरटी बर्मन साहब ने। आरटी बर्मन साहब को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे याद कर रही हूँ मैं। भारतीय सिनेमा में कई महान संगीतकार और उन्होंने अपने दौर को यादगार बनाया, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने वक्त के नहीं होते बल्कि आने वाली पीढ़ियाँ जो जेनरेशंस जो हैं उनके वो बन जाते हैं। आरटी बर्मन साहब जिन्हें दुनिया प्यार से पंचम दा के नाम से जानती है, उन्हीं एक्सक्लूसिव कलाकारों में शामिल हैं। उनकी धुनें सिर्फ गाने नहीं थे बल्कि भावनाएं, इमोशंस, एक्सपेरिमेंट्स, मॉडर्न सोच थी उनकी, तो में मॉडर्न सोच की वो संगम था एंड जो आज भी उतना ही फ्रेश महसूस होता है जितना 40 से 50 साल पहले होता था। जैसे कि पहले आपने गीत सुना फिल्म सागर का, सागर प्रूव टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग बॉलीवुड एल्बम्स ऑफ द डेकेड एंड गॉट हिम अ नॉमिनेशन इन द फिल्म बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर की कैटेगरी में। उनकी 33rd फिल्म फेयर अवार्ड में इन्हें नॉमिनेट किया गया था फॉर सागर। देन केम 1942 अ लव स्टोरी, उसका क्या कहना। म्यूजिक वॉज अ ह्यूज हिट एंड द 3rd बेस्ट सेलिंग हिंदी फिल्म एल्बम थी 1994 की एक लड़की को देखा, ये गाना था उसमें, कुछ ना कहो, रिम झिम, ऐसे बहुत से, प्यार हुआ चुपके से, संग बाय कविता कृष्णमूर्ति। लेकिन बर्मन दा अपनी ये सक्सेस देखने से पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। ही डाइड फ्यू डेज बिफोर द रिलीज ऑफ द फिल्म एंड वॉज उनको उनकी डेथ के बाद उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था फॉर दिस फिल्म एंड दैट वॉज हिज 3rd बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड एट द 40th फिल्म फेयर अवार्ड्स। सो ऐसे बहुत से अवार्ड्स उन्हें मिले और सबसे बड़ा तो अवार्ड यही है कि आज भी दुनिया उनसे बहुत प्यार करती है, उनके संगीत को बहुत बहुत लाइक करती है। एंड मुझे याद है कि बहुत देर पहले मैंने अभिजीत भट्टाचार्य जी को इंटरव्यू किया था व्हेन ही केम हेयर फॉर द स्टेज शो। आई एम टॉकिंग अबाउट 94-95 की बात है एंड ही केम हेयर, तो मैंने उन्हें इंटरव्यू किया और पूछा उनकी स्ट्रगल के बारे में सब कुछ। एंड ही सेड कि अगर मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर्स का नाम लेना है तो 1 से लेकर 10 तक मैं सिर्फ आरटी बर्मन यानी राहुल देव बर्मन जी का नाम लूँगा, उसके बाद फिर मैं दूसरे संगीतकारों का नाम ले सकता हूँ। सो वो पूछते थे उन्हें, कहते मुझे ब्रेक भी उन्होंने ही दी। सो वो तो अभिजीत जी का कहना था, लेकिन सभी कलाकार जो हैं उनकी बहुत इज्जत करते हैं। बहुत सारी बातें बताने को हैं, चलिए देखते हैं वक्त कहां तक इजाजत देगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भई आज आपका एक पाउंड ब्रिटिश पाउंड क्या दे सकते हैं आपको 124 rupees and 15 paise और send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: भी आज न्यूजीलैंड एंड बेल्जियम के बीच में मैच हुआ, 5-1 से जीते बेल्जियम एंड इजिप्ट एंड ईरान के बीच में मैच हो चुका है और 1-1 था जिनका स्कोर। एंड आज रात को होने वाला क्रोशिया एंड गाना के बीच में मैच 10 बजे एंड सेम ग्रुप 1 का मैच है पनामा एंड इंग्लैंड के बीच रात 10 बजे। और ये बताते हैं कि डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Sunny spells in 3, 2, 1. Pop to Co-op. Co-op members get any two packs of 100% British barbecue favourites for £5.50, like smash burgers and sweet chilli chicken kebabs. Co-op. Owned by you, right by you.
4: Ends 28th of July. Selected products subject to availability. Co-op group membership required. £1 joining fee. Full terms at co-op.co.uk/summer.
1: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold.
5: Like a Gold.
6: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026. Watford Colosseum on Saturday, 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday, 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग. रागसन, द वॉइस दैट टचेस every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
8: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
9: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
10: high appreciation
11: in Dubai.
10: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
12: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश. एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को, स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
13: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
14: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
13: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
14: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
13: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
14: Visit Kajal's Couture.
13: This summer, will your child just use technology or learn to build it? At RoboThink Summer Camps, children create robots, learn coding. Use code LAIKA10 for 10% off full week bookings. Visit book.robothink.co.uk/LAIKA or call 07533065549.
15: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
16: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
15: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
17: Sonatours.co.uk. This September, witness the opening of the BAPS Mandir in Paris on a 4 or 5 day tour. Book your journey of blessings and sightseeing with Sonatours. Call 0208-951-0111.
18: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
19: Like a Goon. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
20: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: 1969 में ये धुन बनी थी और आज भी सुने तो कितनी फ्रेश लगती है। यही तो कमाल था आर डी बर्मन साहब का। और ये गीत पिक्चराइज हुआ था किस पर? जितेंद्र जी पर। जितेंद्र और हेमा मालिनी ने इस फिल्म में काम किया था। फिल्म का नाम था वारिस और आर डी बर्मन साहब का था संगीत। ऐसा ही बहुत खूबसूरत संगीत और इसकी इन गीतों को हम कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। यूथ के बीच में भी वो बहुत लोकप्रिय अब भी हैं, क्योंकि अब भी जब यूथ जो जनरेशन है वो इन गीतों को सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये गीत इतने पुराने नहीं हो सकते हैं। उन्हें ये धुनें बहुत अच्छी लगती हैं। उनकी धुनें पुराने दौर की याद भी दिलाती हैं और मॉडर्न संगीत का एहसास भी कराती हैं। कुछ गीत जो हमेशा अमर रहेंगे जैसे दम मारो दम, ये सिर्फ एक गीत नहीं था बल्कि उस दौर के युवाओं की सोच और आज़ादी का प्रतीक बन गया था। उनकी धुन और रिदम आज भी लोगों को झूमने पर मजबूर कर देती है। वैसे तो जो गीत अभी अभी आपने सुना वो भी झूमने को मजबूर करती है। कौन कौन डांस कर रहा था जल्दी से बता दीजिएगा। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, रोमांटिक गीतों की दुनिया में आज भी एक मानक माना जाता है। इसकी शुरुआत गिटार ट्यून से सुनते हैं हम गिटार इन द बिगनिंग, लेकिन वो एक पहचान बन चुकी है। महबूबा महबूबा में उन्होंने भारतीय और मध्य पूर्वी संगीत का ऐसा मिश्रण पेश किया जो उस समय बिल्कुल नया था, और इस गीत में उनकी अपनी आवाज़ भी लोगों को खूब पसंद आई थी। याद है ना, महबूबा शोले के गीत की बात कर रही हूँ। ओ मेरे दिल के चैन, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे ये शाम मस्तानी, रहना बीती जाए, हम तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना, देन मुसाफिर हूँ यारो, पिया तू अब तो आ जा, मेरे नैना सावन भादो। ये गीत कहाँ भूल सकते हैं हम। किस किस गीत को जगा दे सरिता, लेकिन अब अगला गीत सुनाना भी ज़रूरी है, और उससे पहले जो हमारे विनर हैं उनका नाम भी बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने कल प्लान करना है, जाएंगे लेस्टर क्या देखने के लिए, देखने जाएंगे सुखाना रहेजो हस्बैंड, और ये हैं मिस्टर हर्षद लैड। हर्षद जी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपकी टिकट वहाँ वेन्यू पर होगी और वहाँ जाकर आप ये शो देख सकते हैं। हमारी टीम भी आपसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करेगी, और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आइए अब डेरी वैली की तरफ देखें कि उन्होंने कौन सा गीत चुना है।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Film Aradhna se chuna tha maine is geet ko, and while working as an assistant to his father in Shakti Zaman's Aradhna, he played an instrumental role in making Kishore Kumar the playback voice of Rajesh Khanna, who became a superstar with the film blockbuster's success. And even Kishore Kumar's singing career was boosted with Rajesh Khanna, with R.D. Burman, and he became the leading playback singer of Hindi cinema and remained at the position till he died in 1987. बहुत सी फिल्मों में उन्होंने राजेश खन्ना के लिए प्लेबैक दिया, लाइक अपना देश में थे, मेरे जीवन साथी, अमर प्रेम. इसके अलावा और भी बहुत बहुत सारे नाम हैं. उम्मीद करती हूँ कि जो गीत मैंने अपनी प्लेलिस्ट के जरिए अब तक पहुँचाए हैं आपको पसंद आ रहे हैं.
0: ये है Like a Gold.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
0: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: राइट भी आपको बता दें कि साउथ हॉल ट्रैवल वाले आपको क्या बताना चाह रहे हैं. साउथ हॉल ट्रैवल इज़ प्लीज टू अनाउंस दैट द FCDO हैज़ लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रैवल टू दुबई. कॉल साउथ हॉल ट्रैवल फॉर द मोस्ट कम्पिटिटिव दुबई डील्स ऑन 0208-574-8410 एट ऑल प्रोटेक्टेड.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
4: Ye hai
5: Like a Gold.
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
7: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
7: विजिट TravelHubWorld.com.

0: Disha Rice Live Tasting on the 23rd and 24th of May at Pick and Save, Kenton Road, Harrow, HA38BX. Come down and taste the difference.
1: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
2: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
3: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
4: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy Jai's Entertainment line avi rahya che sakhna rejo husband ji Leena Shah ane Sameer Shah sathe hasya ni full guarantee Fridays 26 June 27 patidar samaj Wembley Park ma ratna 8 vage tickets booking mate visit karo eventbrite.co.uk call karo Videorama athwa call karo Mr. B 07860-280655 sakhna rejo husband ji
5: business के कार्ड पेमेंट चार्जेस देख के कभी सोचा है
6: यार मैं कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहा पता लगाने का एक ही तरीका है अपना लेटेस्ट स्टेटमेंट TW Pays को भेजिए और 24 आवर्स में पाइए एक फ्री कंपैरिजन कोड विजिट twpays.com/laika या कॉल कीजिए 0203129-9840 TW Pays हर ट्रांजैक्शन पर ज्यादा बचत
7: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलिडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
8: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 0208-767-7627
9: Leica Radio Network proud hospitality partner Ragasan
10: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है Leica Radio और Leica Gold आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@leicaradio.com
11: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice Take your taste buds to the next level with Tilda
12: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: So, R.D. Barman साहब की कुछ धुनें आपने सुनी. He was not just a music director, बल्कि भारतीय फिल्म संगीत में एक ऐसा युग के निर्माता थे जिन्होंने ये साबित किया कि कल्पना, साहस और प्रयोग मिल जाएं तो संगीत समय की सीमाओं को पार कर जाता है. यही वजह है कि पंचमदा आज भी हर नई पीढ़ी के लिए उतने ही प्रिय हैं जितने उस दौर में थे. उनकी धुनें सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं, और शायद यही किसी महान संगीतकार की सबसे बड़ी पहचान होती है.
2: This is like a gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London, the Leica Group. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 124.53, Pakistani rupee 367.5, Sri Lankan rupees 443.65, Bangladeshi taka 162.31, Afghan Afghanis 85.31 and US dollars 1.31.
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold Rate

0: लाइका गोल्ड।
1: जी हाँ, ये लाइका गोल्ड लाइका रेडियो नेटवर्क के जरिए मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है, जहां भी बैठे आप सुन रहे थे। उम्मीद करती हूँ मेरा साथ आपने पसंद किया। आज हमने नितिन मुकेश जी की बर्थडे मनाया, उसके साथ साथ एनएन सिप्पी साहब को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे याद किया एंड राहुल देव बर्मन जी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे याद किया। उम्मीद करती हूँ मेरे चुने गीत, मेरी बातचीत आप के मन को भाई। अब मेरे जाने का वक्त है और सैंडी शाह जी के आने का वक्त है। सैंडी विल बी हेयर विद विंटेज गोल्ड 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, और उसके बाद आप ओवरनाइट सर्विस में गोल्ड नाइट्स में हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे गीत सुनेंगे। और दूसरी तरफ आ रहे हैं सोनिया, उनका साथ दीजिए मुझे। माइक्रोफोन के इस तरफ से इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।
2: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta, a ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
3: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
4: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
3: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं।
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
9: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
10: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
9: Southall Travel.
10: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
9: Southall Travel can take you there.
11: Southall Travel, at all protected.
12: Packed for the trip? Gifts? Passport?
13: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
12: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
13: Simzy?
12: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
14: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
16: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch

0: Leisha Rice Live Tasting on the 23rd and 24th of May at Pick and Save, Kenton Road, Harrow, HA38BX. Come down and taste the difference.
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
2: Like a goal. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो laikagold.com पे। Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics.
1: Welcome to the Money Supermarket Training Academy,
2: where we put our new recruits through their paces, training them to be their very best at saving the nation money, turning them into deal-finding hotshots, and teaching them how to come up with fantastic rewards for our customers.
3: Is this
2: the Money Supermarket Training Academy? Absolutely. Come in!
4: Money Supermarket, where better off begins. Download the app today. Rewards include prepaid MasterCard, qualifying purchase with logged in account, 18 plus UK only. See site for T's and C's.
5: Leica Gold
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
7: TravelHub, best service with unbeatable price.
6: At all protected.
7: विजिट TravelHubWorld.com.
8: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
9: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 0203 7736333 नाउ. Bonded Mantra Holidays. What's your travel mantra?

0: premium Italian furnishings.
1: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
0: And the best part, townhouses and villas, greens start from just £711,000.
1: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
0: high appreciation
1: in Dubai.
2: Minar Jewelers. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 02087677627.
3: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
4: Reminisce those classics on Leica Gold.

0: इज लाइक अ गोल्ड। ट्रेवल हब वर्ल्ड .com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड .com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड .com।
1: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड .com।
2: जय श्री स्वामी नारायण। सेव द डेट संडे 19 जुलाई 2026 वार्षिक रथ यात्रा माटे भक्तों ने मळशे भगवान श्री जगन्नाथ जी ना रथ ने हैरो अने ब्रेंट नी स्ट्रीट्स पर खेंचवानो पवित्र अवसर। यात्रा नी शुरुआत थशे SKSS टेम्पल केंटन हैरो थी अने समापन थशे श्री स्वामी नारायण टेम्पल स्टेनमोर पर। वधु माहिती माटे बन्ने टेम्पल्स ना सोशल मीडिया अने वेबसाइट्स SKSST.org और StenmoreTemple.com विजिट करो। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो। जय श्री स्वामी नारायण।
3: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
5: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203-773-633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स Your travel mantra.
6: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है। ओ मूवी जिने सब नू हसा हसा के लोट पोट कीता।
7: की कह रहे हो?
6: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
7: की कह रहे हो?
8: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4 जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
7: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
6: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ए लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
9: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार? यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
10: Two businesses,
11: same town,
10: same service.
11: One appears on page one of Google,
10: the other doesn't.
11: Guess which one gets the customer?
10: The truth is brutal.
11: The first page of Google gets the business.
10: Everyone else gets what's left.
11: So here's the real question:
10: when your customers search for what you sell, do they find you?
11: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
10: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
12: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
13: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
12: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
13: And you didn't pay those massive roaming charges?
12: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
14: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
15: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदा बहार गीत।

0: This is Like a Gold. The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
1: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
0: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
1: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
2: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है ओ मूवी जिन्हें सब नू हसा हसा के लोट पोट कीता ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता
3: गिप्पी ग्रेवाल बिन्नू टिल्लो सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4 जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
4: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया
2: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ए लाफ्टर दा
5: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods, Hayes, from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods, Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods,
6: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर
7: आज ऐसा मौका